0: संसार।
1: जित हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए।
0: राती रुती तिथी वार पवन पानी अग्नि पाताल।
1: जिस बे धरती थाप रखी धर्म साल।

0: ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवें छपे संता प्रसाद चक्र चन और वर्ण जातर पात नहन जे
1: रूप रंग रेख पे को कह न सकत कहे
0: अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तोज कही जय
1: कोट इंद्र इंद्रान शाहु शाहन गणि जय
0: सर भवन महीप स्वर नर असुर नेत नेत बन तन कहत
1: तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बनत समत भुजंग पर्याद छंद
0: नमस्तुवंग अकाले नमस्तुवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनुपे
1: नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये
0: नमस्तंग अगंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे
1: नमस्तंग कर्मंग
0: नमस्तंग अजीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग डाहे
1: नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग शेदे नमस्तंग गादे
0: नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे
1: नमस्तंग सोएके नमस्तंग अनेके नमस्तंग पूते नमस्तंग जुपे
0: नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निरदेशे नमस्तंग निरपीछे
1: नमस्तंग नामे
0: नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरगाते नमस्तंग निरतुते नमस्तंग अपुते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके
1: नमस्तंग निरतापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने
0: नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तरवर्गे नमस्तंग असर्गे
1: नमस्तंग परभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे
0: नमस्तंग अगमे नमस्त सातरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे
1: नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मज्वे नमस्तस्त अज्वे
0: अदेसंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे
1: नमो सर्व काले नमो सर्व जले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे
0: नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले
1: नमस्तस्त देवे नमस्तंग पेवे नमस्तंग जन्मे नमस्तंग
0: नमो सर गोणे नमो सर पौने नमो सर बरंगे नमो सर पंगे
1: नमो काल काले नमस्त सत्याले नमस्तंग वरने नमस्तंग मरने
0: नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व तंदे नमो सत अवंदे
1: नमस्तंग निसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग हिमे नमस्तंग करिमे
0: नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्त सत रागे नमस्तंग सुहागे
1: नमो सर्व सोखंग नमो सर्व नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता
0: नम जोग जोगे नम भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले
1: चाचरी शांतव प्रसाद
0: अरूप है अनूप है अजू है अपू है
1: अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है
0: अजे है अपे है अजीत है पीत है
1: त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है
0: अनिल है अनाद है जे है आजाद है
1: अजन्म है अवर्ण है अपूर्ण है अपर है
2: अपांजा है चूज है चांद है
1: अमीग है रफीक है अदंध है अबंद है
2: भूज है सूज है काल है जाल है
1: अला है अजा है अनंत है महंत है
2: अरीकन अरसीकन रलाम है सांब
1: है अगम है अजम है अपूत है अशुद है
2: लोक है शोक है कर्म है परम है
1: अजीत है अपीत है अबा है अगा है
2: मान है निदान है नीक है फरीक है
1: भुजंग पर्याद छंद
2: नमो सर्वमान्य समासी निदाने नमो देव देवे पेखी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पाणे
2: नाथिन संगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने
1: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान
2: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बपुरे
2: कलंकी बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
1: नमो जोग जगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज जगेश्वरम परम वृद्धे
2: नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपोग्रे नमो जोगेश्वरम परम जुग्रे
2: नमो नत नारायण कुरु कर्म नमो प्रेत अप्रेत देवेषु धर्मे
1: नमो रोग हता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पूपे
2: नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमस्तंग शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
2: सदा सद्दा नंसर उपरनाशिनु पिरूपे समस्त निवासी
1: सिद्धा
2: बुद्धा परम परमेश्वर पालंग सदा सर्वदा सदाता दयालंग
1: शेती

0: कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं गली है
1: सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौना
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र
1: सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाले
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गांता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
0: है के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र
1: थापिय सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वं कली में के परमं सही में के आकल अलामे के साहिब कला में
1: वजू तमाम में सो सलाम सलिखत मुदाम प्रभक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है
0: सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज
1: है सलाम सदैवल कामर बास रूप है गाद अनूप है
0: गाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी
1: त्रिकामे गंजे गादे सुभंग सर्भाग्य सर्वाणु रागे
0: त्रिपोक्त स्वरूप है अचिज है अशुद्ध है के नरकन पर नास है पृथ्वी पर वास है
1: निरोक्त प्रमा सदा वंग सदा पोक्त स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
0: निरोक्त सदा है प्रपोक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद
1: अंग नांग पीख लेख

0: ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं दो प्रसाद सवैये श्रावक सत सुमो सधान के देख फिर कर जोग जती के
1: सूर सराधन सुध सदार एक संत समूह अनेक
0: सारे देश को देख रहे हो मत पूर्ण देखित प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति रे
0: मातम दंग जर जर सोंगन लोक तंग सरंग सवारे
1: कोट तरंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे
0: हरि विधान के भू भली बने आप शीश न जात बिचारे सब देश सान गो बाज ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे
0: भूत भवख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के काम सारे
0: नाम दया दम दान संजम नेम अनेक बसेख है
1: वेद प्राणक देव कराण जमीन जवान समान के पिघे
0: कौन हार जति जा तार सब सुब चार हजार क देख है
1: श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक नायक
0: है तो सुबोध रंग तो बहुत सास रहा दुर्जान दलेंगे
1: मारी गमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हलेना हलेंगे तोर
0: रीन मरोर मवासन माते मदंगन मान मलेंगे
1: श्रीपति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पर बड़े बरियार बचार है सार की धार पछैया
1: तोरत देश मलिंद मवासन माते जान के मान मलैया
0: तोरी गडांक तोड़न हास बातन ही चकचार लवैया
1: साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सो एक दवैया नाम
0: जे फनन साचर भूत भवख भवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में पल ही पल में सब
0: थाप थपेंगे पुन बार जतन पापन के बहु पंज खपेंगे
1: साध समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सवे अब लोक छपेंगे
0: मारु इंद्र गंदन राध बजान तर लोको राज करेंगे
1: जो नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे
0: परमेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्रीपत के पस है भगते नर फेर न दे
0: तरेंगे अब दो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
1: नाथ पियो ये साथ समुद्र लोक के ऊपर लोक
0: गवायो सुबह बैठ के ऐसी ऐसी सुबह सुबतायो
1: साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन्हें प्रभु
0: पाहुन पूज तरे सर काहुन लंगर।

0: ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबीर बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ रचा, पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: तब चंदन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रित पारा।
0: हमरे जोर सब तुम काबू, आफात भोए बचाओ।
1: सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा।
0: मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब रन को आसंगरिए।
1: पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा।
0: तुम छाड़ कोई अवरण त्याऊ, जो बरचाऊ स्तम ते पाऊ।
1: सेवक सिख हमारे ताये, चुन चुन सतर हमारे।
0: आफात मजे बरिए, मरण काल का त्रास न बरिए।

0: काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जुग अवतरा
1: काल पाए गर्भ सन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जमन काल जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा जो थियो
1: जमन काल

0: हमारा,
1: नहुं गात सिहि को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी।
0: सिमकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद गियो,
1: काट काट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर।

0: वाहन अनुमान तुमा मूड कछ भेद न जानत।
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हित रहे।
0: आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत पहन पहन दुहि तेती।
1: तुमरा लखन जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा।
0: इसे रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव के भूपा।
1: अंड जेरज से तजगीनी उत्पज खान बहु रच दीनी।
0: कहूल राजा हो बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा।
1: सगरी से दिखाए अचंभव आज जुगा
0: रचा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो।
1: दुष्ट
0: ते उठो सकल मलेश करो रण। तब शरणी परेतन के दुष्ट

0: शब्द स्वभा शब्दो स्वभा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया
1: मन बसया जंतर हो लेके आया
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया
1: शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया
0: पवित होए सेजना जिनी हर त्याया
1: पवित गुरमुख जिनी त्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो पवित संगत सवाया
1: सुन दे पवित से पवित जिनी मन बसाया
0: गए नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: जना उपजय बिन सहज सहसा ना जाए
0: ना जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: जी उमली न कत संजम धोता जाए
0: मन धोबो शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए
1: गुरु प्रसादी सहज उपजय।

0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख बखानी,
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी।
1: करल मां बोलन पैरवाणी,
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची।

जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जप तो चौकुंट माने। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुरु नाओ। सुकोटल गुर सेवी अहन सहज सुभाई, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई।

सच्चा ना रहा। यह बात सच्ची सच कहती है, मंथन सच्चा होए, तन सच्चे हो सलाना, जासे जन्म साफ होए, सच खेती सा जना सच्चा व्यापारा, अंधन रहा नाम तन, अंधन सच अंधन रहा सच नाम तन, भगत पड़े भंडारा, सच खाना सच पहना, सच टेक हर नाम, जिसों बख्श तिस मरे मैं नहीं पाए था, आवे सच्चे जावे।

काया कूर बगाड़ काय न ये नाता सो परवान सच कमाई है जब सच दाल साज अंदर होवे साचा ताम साचा पाईए लिखे बात सोचना बोल बोल गवाईए ये जाय बहिए जिथे अबाए पला कहिए सोच सब रखाइए काया कूड़ कबाड़ काहे ना या ताम कहा कह ताम कहा न कहना दूजे सफाया अमरधार का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मन लागा दुख डेरा टाया सुख मन में आ बसया जाम ते फरमाया नजर तुद अरदास मेरी नजर तुद अरदास मेरी जिन्नी आप पाया ता मैं कह कहानियां तुझे कहाया बारी कल में वाहिकृत कमना मंदा किसे नाक झगड़ा पावना ना पाए झगड़ा श्याम से थे आप पंजाबना जिस नार संगत कर सरीकी क्या जाए क्या रवना जो देश आना मने रहना आग नहीं भावना बारी कथमरा कृत कमावना सब अपाय ने आपे सब अपाय ने आपे न करे कौड़ा किसे मांगे मीठा स्वा मांगे स्वा मीठा मांग दे कसम पावे सोचिए किस पौन दान अनेका ने नाम तो ना सामसरे नानक जन ना मिलया कर्म होया तुर कदे आप पायन आप आपे नजर करे पर हां संभल।

चौथा संत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरे मन मेरे मन सतगुरु फिर लगाई राम, हर हर हर हर नाम मेरे मन वसाई राम, हर हर नाम मेरे मन वसाई, सब दुख निवार सारण हरा। बड़भागी गुरु सद दर्शन पाया, धन धन बड़भाग हमारा, उठत बैठत सतगुरु सेवै, जित सेवै शांत पाई। मेरे मन सतगुरु प्रीत लगाए, हों जीवा सतगुरु देखरा सिर, सर से राम हर नाम ओ हर नाम दिलाए। जब हर हर नाम गसे राम, जब हर हर नाम कुण प्रवासे, हर नाम नहुं दुभाए। होमे रोग गया सुख दुख कालथ, हर सहज समाध सुम लगाई। हर नाम वडाए सतगुरु ते पाई, सुख सतगुरु देह मन सर से। हो जीवा सतगुरु देख रसे, कोई आन मिलावे मेरा सतगुरु पूरा राम। हों मन तन देवा तिस काट शरीर आराम, हों मन तन काट काट तिस दे। जो सतगुरु बचन सुनाए, मेरे मन बैराग पया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते, दे सतगुर बचन हम धूरा, कोई आन मिलावे मेरा सतगुरु पूरा। गुरु जे वड़ दाता मैं अवरना कोई राम, हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्हें राधे तिनका दुख भरम पो पाग, सेवक भाई मिले बड़फागी, जिन गुर चरणी मन लाग। कहो नानक हर आप मिलाए, बिरस गुर सतगुरु पुरख सुख होई। गुरु जे वड़ दाता मैं अवरना कोई वड़हंस, महला चौथा। हाँ गुरु साहब बिन, हाँ गुरु बिन, खरी निमानी राम। जग जीवन दाता।

हर वाहिगुरु एक दृष्ट हरे को जात हरे आत्म राम पछाणी हो गुरबिण हो गुरबिण खरी निमाणी जिन्ना सतगुरु पाया तिन हर ब्रह्म मेल मिलाए राम तिन चरण सरेव हम लागे तिन के पाए राम हर हर चरण सरेव तिन तय तिन के जिन सतगुरु पुरख ते प्रभु ते आए आ तू वड़दाता अंतर जामी मेर सरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेर सरदा पूरी अण दिन राम नाम गुण राम गुण गाए जिन सतगुरु पाया तिन हर प्रभु मेल मिला।

दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्र के दीन हर पास बनंती राम। गुरु मेल मेरा प्यारा, हम सतगुरु कर भगती राम। हर हर सतगुरु कर भगते, जा हर प्रभु कृपा तहारे। मैं गुरु बिन आवरण कोई बेले, गुरु सतगुरु प्राण हमारे। कहो नानक गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम मन सते। हम चात्रक दीन हर पास बिनंते।

हम पापी दीन निर्गुण दीन तुम्हारे राम, हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे, कर दयाल शरण आया, तू दुख भंजन सर्व सुखदाता, हम पात्र तरे तराया, सतगुरु भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे, हर तारो कृपा कर कृपा ले उबारे राम। वड़हंस महला चौथा, घोड़ियाँ एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद दे तुजन जी राम पाई राम, धन मानस जन पुन पाई राम, मानस जन पट पुन्य पाई, देख सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलू ला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया, देह दे, दे।

जड़बड़ भागी लंगे गुरु के बड़ शब्द तराए अण दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर जन रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुख गुरु ज्ञान दृढ़ाया राम तिन तन प्रेम हर चावक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरमुख जीतया कड़ो कढ़ावै शब्द पावे अम हर सबीतया सुन सारुण बाणी गुरु वखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महापार गए पंथ विकड़ा जन नानक ना पार रंगाए घोड़ी तेजन दे राम उपाय राम जित हर प्रभ जापे सा धन धन सब तुखाए राम जित हर प्रभ जापे सा धन सवास तुर पाया किरत जड़ंदा चढ़ दे हिड़ घोड़ी विखण गाए मिल पुरमुख परमानंदा है।

फल पावे, पार संसार बसे, सार के संग सुनो हर नाम, सार के संग न मनते विसरा, सार के संग लगे प्रा मीठा, सार संग पे आज्ञाकारी, सार के संग मिटे सब रोग, सार की महिमा बेर न जाने, सार की उपमा तह गुनते दूर, सार की शोभा का नाही अंत, सार की शोभा उते उची, सार की शोभा सार बनियाई, नानक सार प्रा भेद न पाई श्लोक, मन सच्चा मुख सच्चा सोए, एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रगास, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी उते उच्चा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया, ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सफला, ब्रह्म ज्ञानी संग सरल दाल, ब्रह्म ज्ञानी का रंग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी का होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या जाए दे अखर, ब्रह्म ज्ञानी की मिर्च कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी मुकद जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर्धार है जो अंतर नाम, सर्व में अपेक्षा भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानको परस सगल निस्तार है, अष्टपदि मिथ्या नाही रसना परस, पर त्रय रूप न अपेक्षा नेत्र, करण न सुनाय कहूं की निंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हर है, इंद्री पंदोग ते रहत, वैष्णो सो जि सुपर सुपर सन, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, कहूं फल की इच्छा नहीं बाचा है, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, मन ते विनसै सगला परम, सास संग पापा मल खोवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, हर के चरण हृदय बसावे, सो पंडित जो मन पर बोध, राम नाम सार रस पीवे, हर की कथा हृदय बसावे, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
जो जो जपै तिसकी गत होए कर कृपा अंतर उतार सर्व रोग का औखद नाम काहू जुगल कित न पाइये धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया सदा निकट निकट हर जान अपने दास को आप कृपा करे सगल संग आत्म दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे तैसा रु तैसा उसोग तैसा स्वर्ण तैसी उस मट्टी तैसा मान तैसा अभिमान जो वर्ताए साई जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे कर्ण करावन जोग पसर आप होए न तरंग जैसी मत दे तैसा प्रगास सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करें अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रवृचि भविदनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट बेर के सोते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे कई कोट भय विमानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट पर दर्व को हिरा कई कोट माया शर्मा है जित जिलाओ तित लगना कई कोट सिज्जति योगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पवन पानी वसंतर कई कोट सस्य सूर नखतर सगल समग्री अपने सूत धार कई कोट राजस्थान सातक कई कोट किए रतन समुंद कई कोट किए चिरजीव कई कोट रखर किनर साच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नेर सब ते दूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बैठती खाहे कई कोट किए तनवंत जै जै भाणा तै तै राखे कई कोट भय बैरागी कई कोट प्रभ को खोजनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास कई कोट मंग है सतसंग जिनको है आप सुप्रसन्न कई कोट खानी अरखंड कई कोट होए अवतार कई बार पसर पसार कई कोट किन्ने वो भांत ताका अंत न जाने कोए कई कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत के बेते कई कोट नाम रस पीवे कई कोट नाम गुण गावे अपने जन को सास सास समारे श्लोक कर्ण कारण प्रव एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार न

अवर पाप समीर विसारो करन कारण सो प्रभ समरथ एह धन संचो वो भगवंत एक आस रखो मन माहे जिस धन को चार कुंट उठतावे जिस सुख को निर्बांछे मीत जिस शोभा को करे भली करनी अनक पावी रोग न जाए शरण निदान में हर नाम निदान मन प्रबोधो हर कह नाहे ताको बिघन न लागे कोए कल ताती ठंडा हर नाओ पाओ बिन सह पूरन आस तित कर जाए बस है विनाशी तत विचार कहे जन साचा आवागमन मिटे प्रभ सेव यो रतन जन्म का हो उदार अनक पाव न छूटन हारे हर की भगत करो मन लाए संग न चालस तेरे तना सुत मीत कुटुंबर बनता राय रंग माया विसार अस हस्ती रथ सवारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना गुर की मातुले याने हर की भगत करो मन मीत चरण कमल रखो मन माहे आप जपो अवरा नाम जपावो सार भूत सत हर को नाओ गुण गावत तरी उतर समैल होहे अचिंत वसै सुख नाल छाड़ स्याण सगली मना हर पूंजी संच करो व्यवहार शरण निरंतर एको देख एको जप एको सलाह है एक के गुण गाओ अनंत एको एक खराब अनेक विसार एक ते भये मन तन अंतर एक प्रवरता नानक एक जाता सलोक फिर

जाचक जन जाचे प्रदान साधना की मांगो तूर सरा सरा प्रभ के गुण गावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत एक ओट एक आधार प्रभ की दिष्ट मां सुख होए जिन चाख्या से जन तृप्त सो पर परे प्रेम रस रंग परे शरण आन सब त्याग बड़ भागी जपया प्रभ सोए सेवक की मनसा पूरी पही जन को प्रभ हो दयाल बंधन काट मुगत जन पया इच्छ पुन्नी श्रद्धा सा पूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए सो क्यों बिसरा जे काल न पान है सो क्यों बिसरा जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरा जे अगन में रख सो क्यों बिसरा जे बिखते काड गुर पूरा तते है बुझाया साधन संत करो हे काम सिमर सिमर सिमर सुख पावो भगत पाए तरिया संसार सर्व कल्याण सुख निज नाम सगल दुख का होवत नाल उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ नेत्र पे दर सुख होए भगत जना के मंत्र रंग एक बस दीजे कर मया ताकि उपमा कही न जाए प्रभ बख्शन दीन दयाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल आज पुरस्कार करताल जो जो जपै सो हे पुनीत हम निर्गुण यार नीच जान सर्व वैकुंठ मुगत मोख पाए अनक राज भोग वड्याई वो भोजन का प्रसंगीत पली सुकरनी शोभा तनवंत सा

अपन किया नानका आपे ही फिर जावरी जब कार्य कृष्णांदी सेता जब तारी अपन सुन समार जब इसका वरण चेह न जापत जब अपन आपा पार ब्रह्म अपन खेल आवर्ती जा जब होवत प्रभु केवल तनी जब एक हर अगम अपार जब निर्गुण प्रवाह सह सुभाए जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सकत पहो किठाए जब आपे आप अपनी जो उतर आपन चलित आप करने हार अब नासी सुख अपन आसन जब पूरन करता प्रभु सोए जब अभिगत गोचर प्रवेक्ता जब नाश निरंजन गोचर गादे अपन आप ये चर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संसमावे कर्ण करावन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला पे पर भी न जब अपन आप उतार जय अपन ऊंच अपन आप नेरा विस्मन विषम रहे विस्मार जय अचल छेद पे समाया आपस को आपे आदेश जय एक एक भगवंता जय अपन आप तियारा बहु बेअंत उचे उचा जय आप रचियो परपंच काल पाप पुन तै पई कहावत आल जाल माया जंजाल दुख सुख मान अपमान अपन खेल आप कर देखा है जय अवगत भगत है आप दू पाक का पे तनी आपे कौत करे नंद चोज जिस भावे सपन न लावे बेसमार था अगंत तोले त्यों नानक दास बोले।

गोविंद भगत कै मन विश्राम ओढ़ पराग साध संग मेट संत कृपा ते जमते छूट जाके मस्तक करम प्रपाए साध शरण

0: करे सब कोए तां जय जय कर सब कोए। ओ ऐसी भगत बन आई मेरा मन ऐसी भगत बन आई
1: ऐसी भगत बन आई मन ऐसी भगत बन आई।
0: हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर बिन खिन पल रह ना सको
0: हर बिन खिन पल रह ना सको
1: हर